0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा आज से शुरू करते हैं। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में अर्थात 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, मानवता आज एक महत्वपूर्ण चुनाव का सामना कर रही है। या तो वह अपने लिए बाबिल का मीनार तैयार कर सकती है या एक शहर का निर्माण जिसमें ईश्वर और मानव दोनों एक साथ निवास करते हैं। हर पीढ़ी को अपने में एक युग का निर्माण करने की विरासत मिली है, इतिहास को उस दिशा में संचालित करने का जहां हर व्यक्ति के मानवीय सम्मान की सुरक्षा की जाती हो, जहां न्याय को प्रोत्साहन दिया जाता और भ्रातृत्व को संभव बनाया जाता हो। यद्यपि हर युग में हम एक जोखिम को भी पाते हैं, जो अमानवीय स्थिति और अत्यधिक अन्यायपूर्ण समाज का भी निर्माण करती है। जब कभी मानवता के वास्तविक पहचान को खतरे का भय हुआ, हम ख्रिस्तियों ने अपनी निगाहों को देहधारी ईश्वर की ओर उठाया, इस बात को समझते हुए कि सिर्फ वचन के शरीर धारण रहस्य में हमारे लिए मानवीय रहस्य वास्तव में स्पष्ट होता है। यीशु ख्रिस्त में इस मानवता की अद्वितीयता अपने में एक मार्ग, सत्य और जीवन बनती है, जहां हम अपने लिए एक मार्ग को खुला पाते हैं जो हमें पूर्णता की ओर बढ़ने को मदद करती है। संत पापा अपने परिचय में लिखते हैं, यीशु ख्रिस्त में स्थापित जो हमारे लिए जीवित पत्थर हैं, हम अपने लिए पवित्र आत्मा के शक्तिशाली और रहस्यमय कार्यों का अनुभव करते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि हर सच्चा मानवीय प्रयास जिसे हम अपनी ओर से भलाई हेतु उनके संग सहयोग में करते हैं, स्वर्गीय पिता की ओर से आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम अपनी आशा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हम अपनी ओर से उत्साहपूर्ण ढंग से एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु सहयोग कर सकते हैं और साथ ही हम दूसरों को इस कार्य हेतु निमंत्रण दे सकते हैं कि वे मानव के समग्र विकास हेतु अपनी ओर से सहयोग करें। इस संदर्भ में हम अपने को वर्तमान समय के हर नर और नारी के संग वार्ता में संलग्न कर सकते हैं, जिनके संग हम अपने मानवीय जीवन की घटनाओं, सवालों और सपनों को साझा करते हैं। उनके संग मिलकर हम नए मार्गों की खोज करते हैं जिससे जन सामान्य की भलाई हो और सबों के लिए एक सम्मानजनक जीवन को प्रोत्साहन मिले। वास्तव में वार्ता हेतु खुलापन कलिसा की बुलाहट का एक अंतरिम भाग है, क्योंकि जिसे हम यीशु ख्रिस्त में एक संस्कार स्वरूप स्थापित पाते हैं जो ईश्वर के संग और सारी मानव जाति के संग हमें एकता में पिरोता है। वह इतिहास के इस तथ्य को उस स्थल के रूप में पहचानती है जहां हम सुसमाचार में मानवीय अनुभवों को चुनौती प्राप्त करते हुए अपने को दिशा निर्देशित होता पाते हैं। श्रोताओं, इस मनोभाव में संत पापा लियो 13वें ने सन 1891 में रेरुम नोवारुम अपना विश्व प्रेरितिक पत्र प्रकाशित किया था, जिसकी 135वीं सालगिरह इस वर्ष मनाते हुए हम वृहद कृतज्ञता के भाव ईश्वर को अर्पित करते हैं। उस दस्तावेज के द्वारा मेरे पूर्ववर्ती परम धर्माध्यक्ष ने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर विचार मंथन करने हेतु हमें प्रेरित किया, जिसे हम कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत स्वरूप बेहतर रूप से जानते हैं। संत पापा अपने परिचय में लिखते हैं, जब कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि कलिसिया को दुनियावी बातों में अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अनंत जीवन के संदेश को प्रसारित करने में ध्यान देना चाहिए, तो संत पापा लियो 13वें ने सत्यवाद और विवेक में इसका जवाब देते हुए कहा कि सुसमाचार की घोषणा लोगों के ठोस जीवन को अनदेखा नहीं कर सकती है। इसके बाद कई सदियां बीत गई हैं और धर्म सिद्धांत पुरोहितों, ईश शास्त्रियों और विश्वासियों ने सुसमाचार की ज्योति में सामाजिक मुद्दों पर विचार मंथन करना जारी रखा है। आज कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा अपने में विवेक की एक विरासत है, जहां हम विचारों के मूल सिद्धांत को आत्मपरक और न्याय के मापदंड और कार्यों के निष्पादन हेतु ठोस दिशा निर्देशिका स्वरूप पाते हैं। ये सारी चीजें पवित्र धर्म ग्रंथ और परंपरा तथा विज्ञान से हमारे जुड़ाव को प्रस्तुत करती हैं। ये हमें सुस्पष्ट रूप में वर्तमान समय की चुनौतियों को पहचानने और उन्हें परिभाषित करने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने ख्रिस्तीय साक्ष्य को उचित रूप में जी सकें, जो विश्व के लिए हमारी खुशी और सेवा के भाव को अभिव्यक्त करती है। यह विचारों का कोई निष्क्रिय समूह नहीं है, बल्कि सच्चाई का एक जीता जागता समावेश है।

विवेक की मांग करने की जरूरत है, जिससे हम वर्तमान समय की प्रवृत्तियों को देख और समझ सकें, विशेषकर तकनीकी विकास की चीजों को। विगत सालों में हम इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, डिजिटलाइजेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने किस तेजी से विकास किया है और रोबोट्स हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। तकनीकी को हम स्वयं में मानवता विरोधी एक ताकत के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत हमारे जीवन इतिहास के शुरू से ही यह एक गहन मानवीय वास्तविकता जो मानव की स्वायत्तता और स्वतंत्रता से जुड़ी है का अंग बन गया है। आए सालों में हम तकनीकी विकास के कारण मानवीय जीवन शैली में एक विशेष तरक्की को पाते हैं। वहीं हर विकास का स्तर हमारे लिए उपकरणों की अस्पष्टता को प्रकट करता है, जो हमारे लिए हानि के कारण बनते हैं जब उन्हें उचित कार्यों के लिए दिशा निर्देशित नहीं किया गया हो। आज यद्यपि हम अपने को इस नई परिस्थिति का सामना करते हुए पाते हैं, शक्ति और तकनीकी विकास ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने सोच विचारों को उनके द्वारा गहरी रूप में प्रभावित होता पाते हैं। मानव के ऊपर शक्ति का प्रभाव इतना अधिक पहले कभी नहीं था। नई तकनीकियां ऐसी दिशाएं खोलती हैं जिनकी कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन अभी उनका पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इससे उनके संभावित प्रभाव और मानव के सम्मान और आम भलाई दोनों पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, हमने कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत आज संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास पर अपनी चर्चा शुरू की। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने अक्टूबर 2026 में अमोरिस लेतिसिया पर होने वाली सभा के लिए तैयारी का दस्तावेज प्रकाशित किया है, जो स्वर्गीय पोप फ्रांसिस के परिवार पर सिनेट के बाद प्रकाशित प्रेरित प्रबोधन के 10 साल पूरा होने पर की जाएगी। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित विभाग और सिनेट के महासचिव ने विषयगत ढांचा तैयारी हेतु दस्तावेज प्रकाशित किया है, जो पोप लियो 14वें द्वारा बुलाई गई सभा का संचालन करेगा। यह सभा 7 से 14 अक्टूबर 2026 को वैटिकन में पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं के प्रमुखों एवं कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ होगी। दस्तावेज को पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं के प्रमुखों एवं धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों को भेजा गया है और इसे 6 जुलाई को प्रकाशित किया गया। विषयगत ढांचा का मकसद पोप लियो 14वें द्वारा 7 से 14 अक्टूबर 2026 तक वैटिकन में उनके साथ होने वाली मीटिंग की तैयारी करना और उनके काम में साथ देना है। इस सभा की घोषणा सबसे पहले पोप ने 19 मार्च 2026 के अपने संदेश में की थी, जो सिनट के बाद प्रकाशित प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया की 10वीं सालगिरह थी। परिवारों पर असर डाल रहे बड़े बदलावों को स्वीकार करते हुए पोप ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि आज परिवारों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर एक दूसरे की बात सुनकर एक सिनोडल आत्मपरख की जाए। अमोरिस लेतिसिया के आलोक में और स्थानीय

कलीसिया में अभी क्या हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए 27 जून को हुए असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में पोप लियो ने परिवार की सभा की याद दिलाई थी और कहा था, जहां परिवार को सहयोग और साथ मिलता है वहां रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का स्कूल बढ़ता है, जबकि जहां यह घायल या अकेला होता वहां पूरा समाज इसके नतीजे भुगतता है। उसी मौके पर उन्होंने घोषणा की थी कि सभा में कई परिवार भी हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। रोम में दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को विषयगत ढांचा में बताए गए विषय पर बात करने और एक दूसरे को ध्यान से सुनने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वे अपने स्थानीय कलीसिया में लौटकर परिवारों के साथ मिलकर परिवार, मानव जीवन और शादी की बुलाहट के समर्थन में एक साझा प्रेरित समर्पण को फिर से दोहरा सकेंगे। सभा का मकसद मुलाकात, सुनने और आत्मपरख के लिए एक असली जगह देना है, परिवारों के अनुभव का स्वागत करना, जीवन की ठोस कहानियां साझा करना, प्रेरित प्रयासों पर चिंतन करना जिनके जरिए कलीसियाई समुदाय परिवारों का साथ देता है। यही कारण है कि धर्माध्यक्ष सम्मेलन और पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं को सभा से पहले के महीनों में प्रस्तावित विषय पर चिंतन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें अपने स्थानीय कलीसियाओं के परिवारों की बात सुनने पर खास जोर दिया गया है। इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरितिक यात्रा है, जिसमें परिवारों को सिर्फ कलीसिया की प्रेरितिक देखभाल पाने वालों के रूप में नहीं बल्कि उसके मिशन के सक्रिय विषय के रूप में केंद्र में रखा गया है, जिनके द्वारा सुसमाचार प्रतिदिन के संबंधों, चुनाव, मुश्किलों और उम्मीद में भी असर डालता है। हालांकि यह मीटिंग धर्माध्यक्षों की सिनट की सभा नहीं है, लेकिन इसे सिनट की शैली में किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि पोप लियो XIV ने कंसिस्ट्री के अंत में बताया था, यह सिनट के लागू करने की प्रक्रिया की भावना को साझा करती है, जिसमें सुनना, प्रार्थना करना और आत्मपरख शामिल है। सभा की तैयारी और उसके दौरान चिंतन के लिए 5 विषय वस्तु वाले क्षेत्र सुझाए जा रहे हैं। विषय वस्तुएं हैं आज के परिवार, असलियत, खूबसूरती और चुनौतियाँ, परिवारों के अनुभव और आज कलीसिया के प्रेरित प्रतिबद्धता के द्वारा समय के संकेतों को समझना, युवा और शादी के बुलावे की खोज करने वाले युवाओं की बात सुनना एवं वैवाहिक जीवन का मूल्य जानने में उनका साथ देना। शादी के पहले साल जो एक अहम समय होता है, विवाहित दंपतियों को सुनना और उनका साथ देना, जीवन की कठिनाइयों में उनका साथ देना और उनका समर्थन करना, मुश्किल हालात में परिवारों के साथ चलना, कलीसिया के मिशन के अधीन होने के कारण ख्रिस्ते परिवारों को मिशन के लिए एक प्रेरणा के रूप में वैवाहिक और पारिवारिक प्यार को अपनाए रखना। वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कस्तेल गंदोल्फो के पल्ली पुरोहित पोलिश सलेशियन फादर थदेयुस रोजमुस ने उम्मीद जताई है कि पोप लियो XIV झील के किनारे बसे शहर कस्तेल गंदोल्फो में गर्मियों की छुट्टियां अच्छी तरह बिता पाएंगे। हमारी इच्छा है कि संत पापा यहाँ कस्तेल गंदोल्फो में अच्छी तरह रहें, ताकि वे आराम कर सकें और वही कर सकें जो उन्होंने खुद अपने रहने का मकसद बताया है, प्रार्थना, आराम, पढ़ना और खेलना। यह बात फादर थदेयुस रोजमुस STV ने कही है, जब विला नोवा में परमधम पीठे पल्ली संत थॉमस के पल्ली पुरोहित हैं। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में पोलिश फादर ने पोप की छुट्टियों के पहले के दिनों को याद किया, पिछले साल के अवकाश के समय की और कस्तेल गंदोल्फो में लौटने पर वहाँ के लोगों के उत्साह के बारे में। सबसे पहले फादर थदेयुस ने अपना आभार व्यक्त किया, क्योंकि प्रेरितिक आवास की बालकनी से अपने पहले अभिवादन में पोप लियो XIV ने पल्ली पुरोहित एवं पल्ली समुदाय को विशेष रूप से याद किया, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फादर ने कहा, मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था, मैंने इससे हमारे परमधम पीठे पल्ली के मूल्य की पहचान के रूप में समझा। हालांकि यहाँ मौजूद वैटिकन संरचना अपने आप काम करती है, कलीसियाई कानून के अनुसार पल्ली और उसके पल्ली पुरोहित की एक अहम भूमिका है, यह हमारे पूरे समुदाय के लिए पोप की तरफ से एक बहुत सुंदर भाव था। पल्ली पुरोहित के अनुसार इस साल पोप लियो का रहना पिछले साल से अलग है। पोप ने पहले ही बताया था कि वे इस गर्मी छुट्टी को कस्तेल गंदोल्फो में बिताना चाहते हैं। संत पापा ने साफ साफ कहा है कि वे यहाँ प्रार्थना करने, आराम करने, पढ़ने और खेल कूद करने आए हैं। हमारी कोई खास उम्मीदें नहीं हैं, हम बस चाहते हैं कि वे यहाँ आराम महसूस करें
और अपनी इच्छा अनुसार शांति से यह समय बिता सकें। यही बात विश्वासियों पर भी लागू होती है जो खुद पोप लियो द्वारा किए जाने वाले देवदूत प्रार्थना और दूसरी संभावित मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार। आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास की चर्चा आज से शुरू करते हैं। यह संत पापा लियो 14वें का प्रथम विश्व प्रेरितिक पत्र है, जिसकी प्रकाशना हाल ही में अर्थात 25 मई 2026 को की गई। यह हमारा ध्यान कृत्रिम बुद्धिमता AI के वर्तमान संदर्भ में मानवीय जीवन के सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है। श्रोताओं, मानवता आज एक महत्वपूर्ण चुनाव का सामना कर रही है। या तो वह अपने लिए बाबिल का मीनार तैयार कर सकती है या एक शहर का निर्माण जिसमें ईश्वर और मानव दोनों एक साथ निवास करते हैं। हर पीढ़ी को अपने में एक युग का निर्माण करने की विरासत मिली है, इतिहास को उस दिशा में संचालित करने का जहां हर व्यक्ति के मानवीय सम्मान की सुरक्षा की जाती हो, जहां न्याय को प्रोत्साहन दिया जाता और भ्रातृत्व को संभव बनाया जाता हो। यद्यपि हर युग में हम एक जोखिम को भी पाते हैं, जो अमानवीय स्थिति और अत्यधिक अन्यायपूर्ण समाज का भी निर्माण करती है। जब कभी मानवता के वास्तविक पहचान को खतरे का भय हुआ, हम ख्रिस्तियों ने अपनी निगाहों को देहधारी ईश्वर की ओर उठाया, इस बात को समझते हुए कि सिर्फ वचन के शरीर धारण रहस्य में हमारे लिए मानवीय रहस्य वास्तव में स्पष्ट होता है। यीशु ख्रिस्त में इस मानवता की अद्वितीयता अपने में एक मार्ग सत्य और जीवन बनती है, जहां हम अपने लिए एक मार्ग को खुला पाते हैं जो हमें पूर्णता की ओर बढ़ने को मदद करती है। संत पापा अपने परिचय में लिखते हैं, यीशु ख्रिस्त में स्थापित जो हमारे लिए जीवित पत्थर हैं, हम अपने लिए पवित्र आत्मा के शक्तिशाली और रहस्यमय कार्यों का अनुभव करते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि हर सच्चा मानवीय प्रयास जिसे हम अपनी ओर से भलाई हेतु उनके संग सहयोग में करते हैं, स्वर्गीय पिता की ओर से आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम अपनी आशा बनाए रखते हैं। यही कारण है कि हम अपनी ओर से उत्साहपूर्ण ढंग से एक अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण हेतु सहयोग कर सकते हैं और साथ ही हम दूसरों को इस कार्य हेतु निमंत्रण दे सकते हैं कि वे मानव के समग्र विकास हेतु अपनी ओर से सहयोग करें। इस संदर्भ में हम अपने को वर्तमान समय के हर नर और नारी के संग वार्ता में संलग्न कर सकते हैं, जिनके संग हम अपने मानवीय जीवन की घटनाओं, सवालों और सपनों को साझा करते हैं। उनके संग मिलकर हम नए मार्गों की खोज करते हैं, जिससे जन सामान्य की भलाई हो और सबों के लिए एक सम्मानजनक जीवन को प्रोत्साहन मिले। वास्तव में वार्ता हेतु खुलापन कलिसा की बुलाहट का एक अंतरिम भाग है, क्योंकि जिसे हम यीशु ख्रिस्त में एक संस्कार स्वरूप स्थापित पाते हैं, जो ईश्वर के संग और सारी मानव जाति के संग हमें एकता में पिरोता है। वह इतिहास के इस तथ्य को उस स्थल के रूप में पहचानती है जहां हम सुसमाचार में मानवीय अनुभवों को चुनौती प्राप्त करते हुए अपने को दिशा निर्देशित होता पाते हैं। श्रोताओं, इस मनोभाव में संत पापा लियो 13वें ने सन 1891 में रेरुम नोवारुम अपना विश्व प्रेरितिक पत्र प्रकाशित किया था, जिसकी 135वीं सालगिरह इस वर्ष मनाते हुए हम वृहद कृतज्ञता के भाव ईश्वर को अर्पित करते हैं। उस दस्तावेज के द्वारा मेरे पूर्ववर्ती परम धर्माध्यक्ष ने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर विचार मंथन करने हेतु हमें प्रेरित किया, जिसे हम कलिसिया का सामाजिक धर्म सिद्धांत स्वरूप बेहतर रूप से जानते हैं। संत पापा अपने परिचय में लिखते हैं, जब कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि कलिसिया को दुनियावी बातों में अपनी शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अनंत जीवन के संदेश को प्रसारित करने में ध्यान देना चाहिए, तो संत पापा लियो 13वें ने सत्यवाद और विवेक में इसका जवाब देते हुए कहा कि सुसमाचार की घोषणा लोगों के ठोस जीवन को अनदेखा नहीं कर सकती है। इसके बाद कई सदियां बीत गई हैं और धर्म सिद्धांत पुरोहितों, ईश शास्त्रियों और विश्वासियों ने सुसमाचार की ज्योति में सामाजिक मुद्दों पर विचार मंथन करना जारी रखा है। आज कलिसिया की सामाजिक धर्म शिक्षा अपने में विवेक की एक विरासत है, जहां हम विचारों के मूल सिद्धांत को आत्मपरक और न्याय के मापदंड और कार्यों के निष्पादन हेतु ठोस दिशा निर्देशिका स्वरूप पाते हैं। ये सारी चीजें पवित्र धर्म ग्रंथ और परंपरा तथा विज्ञान से हमारे जुड़ाव को प्रस्तुत करती हैं। ये हमें सुस्पष्ट रूप में वर्तमान समय की चुनौतियों को पहचानने और उन्हें परिभाषित करने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने ख्रिस्तीय साक्ष्य को उचित रूप में जी सकें, जो विश्व के लिए हमारी खुशी और सेवा के भाव को अभिव्यक्त करती है। यह विचारों का कोई निष्क्रिय समूह नहीं है, बल्कि सच्चाई का एक जीता जागता समावेश है, जो संपूर्ण मानवता और न्यायपूर्ण जीवन के बुलावे की रक्षा और उसे परिभाषित करता है। संत पापा लियो लिखते हैं कि अतः मैं इस सजीव परंपरा में अपनी आवाज को संलग्न करना चाहूंगा, उस विवेक की आत्मा की पुकार करते हुए जो दुनिया की सृष्टि से पहले हमारे लिए वहां वास करते हैं। संत पापा लियो 13वें अपने समय की नई चीजों रेरुम नोवारुम में कहते हैं, हम अपने में उनमें प्रकाशित करने वाली शिक्षाओं तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, इसके बदले में हमें ईश्वर से उस विवेक की मांग करने की जरूरत है, जिससे हम वर्तमान समय की प्रवृत्तियों को देख और समझ सकें, विशेषकर तकनीकी विकास की चीजों को। विगत सालों में हम इस बात को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, डिजिटलाइजेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने किस तेजी से विकास किया है और रोबोट्स हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। तकनीकी को हम स्वयं में मानवता विरोधी एक ताकत के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत हमारे जीवन इतिहास के शुरू से ही यह एक गहन मानवीय वास्तविकता जो मानव की स्वायत्तता और स्वतंत्रता से जुड़ी है का अंग बन गया है। आए सालों में हम तकनीकी विकास के कारण मानवीय जीवन शैली में एक विशेष तरक्की को पाते हैं। वहीं हर विकास का स्तर हमारे लिए उपकरणों की अस्पष्टता को प्रकट करता है, जो हमारे लिए हानि के कारण बनते हैं, जब उन्हें उचित कार्यों के लिए दिशा निर्देशित नहीं किया गया हो। आज यद्यपि हम अपने को इस नई परिस्थिति का सामना करते हुए पाते हैं, शक्ति और तकनीकी विकास ने हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित किया है। हम अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने सोच विचारों को उनके द्वारा गहरे रूप में प्रभावित होता पाते हैं। मानव के ऊपर शक्ति का प्रभाव इतना अधिक पहले कभी नहीं था। नई तकनीकियां ऐसी दिशाएं खोलती हैं जिनकी कल्पना तो की जा सकती है, लेकिन अभी उनका पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इससे उनके संभावित प्रभाव और मानव के सम्मान और आम भलाई दोनों पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। श्रोताओं, हमने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत आज संत पापा लियो 14वें के विश्व प्रेरितिक पत्र मैनिफिका ह्यूमानिटास पर अपनी चर्चा शुरू की। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन ने अक्टूबर 2026 में अमोरिस लेतिसिया पर होने वाली सभा के लिए तैयारी का दस्तावेज प्रकाशित किया है, जो स्वर्गीय पोप फ्रांसिस के परिवार पर सिनेट के बाद प्रकाशित प्रेरित प्रबोधन के 10 साल पूरा होने पर की जाएगी। लोक धर्मी परिवार एवं जीवन के लिए गठित विभाग और सिनेट के महासचिव ने विषयगत ढांचा तैयारी हेतु दस्तावेज प्रकाशित किया है, जो पोप लियो 14वें द्वारा बुलाई गई सभा का संचालन करेगा। यह सभा 7 से 14 अक्टूबर 2026 को वैटिकन में पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं के प्रमुखों एवं कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ होगी। दस्तावेज को पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं के प्रमुखों एवं धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों को भेजा गया है और इसे 6 जुलाई को प्रकाशित किया गया। विषयगत ढांचा का मकसद पोप लियो 14वें द्वारा 7 से 14 अक्टूबर 2026 तक वैटिकन में उनके साथ होने वाली मीटिंग की तैयारी करना और उनके काम में साथ देना है। इस सभा की घोषणा सबसे पहले पोप ने 19 मार्च 2026 के अपने संदेश में की थी, जो सिनट के बाद प्रकाशित प्रेरित प्रबोधन अमोरिस लेतिसिया की 10वीं सालगिरह थी। परिवारों पर असर डाल रहे बड़े बदलावों को स्वीकार करते हुए पोप ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि आज परिवारों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर एक दूसरे की बात सुनकर एक सिनोडल आत्मपरख की जाए। अमोरिस लेतिसिया के आलोक में और स्थानीय कलीसिया में अभी क्या हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए 27 जून को हुए असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में पोप लियो ने परिवार की सभा की याद दिलाई थी और कहा था, जहां परिवार को सहयोग और साथ मिलता है, वहां रिश्तों, एकजुटता और उम्मीद का स्कूल बढ़ता है, जबकि जहां यह घायल या अकेला होता, वहां पूरा समाज इसके नतीजे भुगतता है। उसी मौके पर उन्होंने घोषणा की थी कि सभा में कई परिवार भी हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। रोम में दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को विषयगत ढांचा में बताए गए विषय पर बात करने और एक दूसरे को ध्यान से सुनने के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वे अपने स्थानीय कलीसिया में लौटकर परिवारों के साथ मिलकर परिवार, मानव जीवन और शादी की बुलाहट के समर्थन में एक साझा प्रेरित समर्पण को फिर से दोहरा सकेंगे। सभा का मकसद मुलाकात, सुनने और आत्मपरख के लिए एक असली जगह देना है, परिवारों के अनुभव का स्वागत करना, जीवन की ठोस कहानियां साझा करना, प्रेरित प्रयासों पर चिंतन करना, जिनके जरिए कलीसियाई समुदाय परिवारों का साथ देता है। यही कारण है कि धर्माध्यक्ष सम्मेलन और पूर्वी कार्तिक कलीसियाओं को सभा से पहले के महीनों में प्रस्तावित विषय पर चिंतन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें अपने स्थानीय कलीसियाओं के परिवारों की बात सुनने पर खास जोर दिया गया है। इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरितिक यात्रा है, जिसमें परिवारों को सिर्फ कलीसिया की प्रेरितिक देखभाल पाने वालों के रूप में नहीं, बल्कि उसके मिशन के सक्रिय विषय के रूप में केंद्र में रखा गया है, जिनके द्वारा सुसमाचार प्रतिदिन के संबंधों, चुनाव, मुश्किलों और उम्मीद में भी असर डालता है। हालांकि यह मीटिंग धर्माध्यक्षों की सिनट की सभा नहीं है, लेकिन इसे सिनट की शैली में किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि पोप लियो 14वें ने कंसिस्ट्री के अंत में बताया था, यह सिनट के लागू करने की प्रक्रिया की भावना को साझा करती है, जिसमें सुनना, प्रार्थना करना और आत्मपरख शामिल है। सभा की तैयारी और उसके दौरान चिंतन के लिए 5 विषय वस्तु वाले क्षेत्र सुझाए जा रहे हैं। विषय वस्तुएं हैं, आज के परिवार, असलियत, खूबसूरती और चुनौतियाँ, परिवारों के अनुभव और आज कलीसिया के प्रेरितिक प्रतिबद्धता के द्वारा समय के संकेतों को समझना, युवा और शादी के बुलावे की खोज करने वाले युवाओं की बात सुनना एवं वैवाहिक जीवन का मूल्य जानने में उनका साथ देना, शादी के पहले साल जो एक अहम समय होता है, विवाहित दंपतियों को सुनना और उनका साथ देना, जीवन की कठिनाइयों में उनका साथ देना और उनका समर्थन करना, मुश्किल हालात में परिवारों के साथ चलना, कलीसिया के मिशन के अधीन होने के कारण ख्रिस्ते परिवारों को मिशन के लिए एक प्रेरणा के रूप में वैवाहिक और पारिवारिक प्यार को अपनाए रखना। वैटिकन न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कस्तेल गंदोल्फो के पल्ली पुरोहित पोलिश सलेशियन फादर थदेयुस रोजमुस ने उम्मीद जताई है कि पोप लियो 14वें झील के किनारे बसे शहर कस्तेल गंदोल्फो में गर्मियों की छुट्टियां अच्छी तरह बिता पाएंगे।
हमारी इच्छा है कि संत पापा यहाँ कस्तल गंदोल्फो में अच्छी तरह रहें, ताकि वे आराम कर सकें और वही कर सकें जो उन्होंने खुद अपने रहने का मकसद बताया है, प्रार्थना, आराम, पढ़ना और खेलना। यह बात फादर थदेयस रोजमुस एसडीवी ने कही है, जब विला नोवा में परमधम पीठे पल्ली संत थॉमस के पल्ली पुरोहित हैं। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में पोलिश फादर ने पोप की छुट्टियों के पहले के दिनों को याद किया, पिछले साल के अवकाश के समय की और कस्तल गंदोल्फो में लौटने पर वहां के लोगों के उत्साह के बारे में। सबसे पहले फादर थदेयस ने अपना आभार व्यक्त किया, क्योंकि प्रेरितिक आवास की बालकनी से अपने पहले अभिवादन में पोप लियो चौदवे ने पल्ली पुरोहित एवं पल्ली समुदाय को विशेष रूप से याद किया, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फादर ने कहा, मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। मैंने इससे हमारे परमधम पीठे पल्ली के मूल्य की पहचान के रूप में समझा। हालांकि यहाँ मौजूद वैटिकन संरचना अपने आप काम करती है, कलीसियाई कानून के अनुसार पल्ली और उसके पल्ली पुरोहित की एक अहम भूमिका है। यह हमारे पूरे समुदाय के लिए पोप की तरफ से एक बहुत सुंदर भाव था। पल्ली पुरोहित के अनुसार इस साल पोप लियो का रहना पिछले साल से अलग है। पोप ने पहले ही बताया था कि वे इस गर्मी छुट्टी को कस्तल गंदोल्फो में बिताना चाहते हैं। संत पापा ने साफ साफ कहा है कि वे यहाँ प्रार्थना करने, आराम करने, पढ़ने और खेल कूद करने आए हैं। हमारी कोई खास उम्मीदें नहीं हैं, हम बस चाहते हैं कि वे यहाँ आराम महसूस करें और अपनी इच्छा अनुसार शांति से यह समय बिता सकें। यही बात विश्वासियों पर भी लागू होती है, जो खुद पोप लियो द्वारा किए जाने वाले देवदूत प्रार्थना और दूसरी संभावित मुलाकातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार, आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: चिरिदौर में अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर

0: अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पास

0: तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: महिमा का पहला भेद, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं,
2: मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहें।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
3: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
3: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का दूसरा भेद, प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होते हैं।
2: मतलब हम ईश्वर को दिन दिन अधिक प्यार करें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का तीसरा भेद पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है,
2: मतलब हम अपने पड़ोसियों को प्यार कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: महिमा का चौथा भेद, माता मरियम स्वर्ग में उठा रखी जाती है,
2: मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से कर सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: महिमा का पांचवा भेद, माता मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है।
2: मतलब हमारे बिछुड़े भाई बहने असल धर्म में फिर लौट सकें।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर कृपा

द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है लंपेदूसा द्वीप में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: पोप लियो चौथवें ने विगत 4 जुलाई को लंपेदूसा द्वीप का दौरा किया। लंपेदूसा द्वीप प्रवास संकट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इटली का यह द्वीप उत्तरी अफ्रीकी तट के करीब है और संघर्ष, उत्पीड़न एवं गरीबी से बचने वाले हजारों अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए यूरोप में घुसने का प्रवेश द्वार है। अपने साफ फिरोजी समुद्र, सफेद रेतीले तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का रैबिट बीच विश्व के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है और यह समुद्री कछुओं के अंडे देने का महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस तरह लंपेदूसा द्वीप अपनी सामरिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री जैव विविधता और प्रवासी संकट के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बावजूद लंपेदूसा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह यूरोप एवं अफ्रीका के बीच होने के कारण प्रवासी संकट का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां बार बार मानवीय त्रासदियां एवं समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर वर्ष हजारों लोग छोटी एवं असुरक्षित नावों से भूमध्य सागर पार करके यहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस यात्रा के दौरान अनेक नावें डूब जाती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लंपेदूसा का नाम मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन गया है। दूसरी बड़ी समस्या जिससे लंपेदूसा जूझ रहा है वह है सीमित संसाधनों और छोटी आबादी वाले इस द्वीप पर अचानक भारी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से स्थानीय प्रशासन एवं निवासियों पर भारी दबाव पड़ना। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पोप लियो चौदहवें ने 4 जुलाई को लंपेदूसा की एक दिवसीय यात्रा की। उन्होंने अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान प्रवासियों एवं शरणार्थियों की बुरी हालत पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita.
0: 4 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे भूमध्य सागरीय द्वीप पहुंचने पर पोप लियो चौदहवें ने द्वीप के लोगों एवं लंपेदूसा से गुजरने वाले अप्रवासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। साथ ही उन लोगों के प्रति शोक प्रकट किया जो अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सके। लंपेदूसा पहुंचकर पोप सबसे पहले कब्रस्थान गए, जहाँ समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कब्रस्थान में हर तरह के लोगों को दफनाया गया है, कैथोलिक और मुस्लिम, जवान और बूढ़े तथा काले एवं गोरे, जो आज़ादी की तलाश में समुद्र में खो गए। फिर वे यूरोप जाने का द्वार गए, जो एक स्मारक है और उन अप्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।
1: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto.
0: लंपेदूसा के लोगों ने संत पापा के आने के करीब एक घंटे बाद उनकी आवाज सुनी, जब उन्होंने सलाइन इलाके के एरिना खेल मैदान में अपने दौरे के पहले हिस्से में छाई चुप्पी को तोड़ा और पूरे समुदाय को उनके गर्म जोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उनका पहला विचार संत पापा फ्रांसिस के लिए था, जिन्होंने 2013 में इसी शहर को प्रवासी त्रासदी का केंद्र एवं एकजुटता की वेदी बनाया था। पोप लियो ने कहा, आपने फाउलोरो पियर तट का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है। यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्वाधिकारी ने आपके समुदाय एवं हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया है। आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। इसके बाद पोप ने एक खुली जीप में भीड़ के बीच से गुजरते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया तथा लंपेदूसा की संरक्षिका पोतो साल्वो की माता मरियम की प्रतिमा वाले सादे मंच से लंपेदूसा एवं लिनोसा के विश्वासों का अभिवादन किया। तत्पश्चात अरेना खेल मैदान में करीब 6,000 लोगों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। लंपेदूसा द्वीप में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए पोप लियो चौदहवें ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के साथ हुए बुरे वर्ताव तथा समुद्र में हुई मौत की निंदा की और दुनिया से इस घोर दुख पर ठोस एवं दया से जवाब देने की अपील की। अपने प्रवचन में पोप लियो ने कहा, आज लंपेदूसा एवं उसका पड़ोसी द्वीप लिनोसा सुसमाचार में वर्णित भले समारी की कहानी में यरूशलेम से जेरिको जाने वाले रास्ते के समान खतरनाक है। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया है, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। संत पापा ने दुख जताया कि समुद्र ने कई और लोगों की जान ले ली है जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जिनकी मौजूदगी हमें उतनी ही चुनौती देती है जितनी उन लोगों की जिन्हें ध्यान और मदद की जरूरत है। पोप ने आगे कहा, असल में किसी भी चिंतन या सोच से पहले जो लोग हमारे सामने हैं उनसे मिलना हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। लंपेदूसा के लोगों की ओर मुड़ते हुए पोप ने उनकी एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, लंपेदूसा के भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए करुणा का चमत्कार एक बार फिर होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, दूसरों तक पहुँचने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हल्के में लिया जाए, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। पोप ने कहा कि जो लोग खुद को करुणा और दया के इस माहौल में खींच लेते हैं वे अलग तरह से जीना शुरू करते हैं, एक नए तरीके से नागरिक बन जाते और अलग तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन 23वें, संत पापा पॉल 6वें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सोची गई प्यार की सभ्यता सच में उभर सकती है। उन्होंने कहा, पिछली सदी के बहुत सारे नबियों और शहीदों के साथ वे समझ गए थे कि सिर्फ दया ही इंसान के दिल की गहराई एवं युद्ध के डरावनेपन का जवाब दे सकती है और एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती है। अब इन दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर हम एक ऐसी सदी में आ गए हैं जिसमें हमें प्यार की सभ्यता को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक रूप देना होगा। पोपलियो ने दिल से अपील करते हुए कहा, हम जो दुख देख रहे हैं उसकी गंभीरता हमें इस बुलावे के असली रूप को समझने में मदद करे। इस तरह लंपेदूसा में पोपलियो 14वीं की प्रेरित यात्रा करुणा, मानव गरिमा एवं एकजुटता का सशक्त संदेश देती है। यह यात्रा हमें स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक प्रवासी और शरणार्थी सबसे पहले एक इंसान है जिसकी सुरक्षा, सम्मान और आशा की रक्षा करना समस्त मानवता की जिम्मेदारी है। पोप का संदेश केवल लंपेदूसा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आह्वान है कि भय, उदासीनता और भेदभाव के स्थान पर प्रेम, करुणा, न्याय एवं भाईचारे को अपनाया जाए। इस प्रकार लंपेदूसा आशा, शांति एवं मानवीय संदेश का प्रतीक बनकर विश्व को यह प्रेरणा देता है कि हम प्रत्येक पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्ति में ईश्वर की छवि को पहचानें और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने लंपेदूसा में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में 200 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। संत पापा के साथ भोजन नाम के इस पहल की शुरुआत सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पवित्र मिसा समारोह से होगी। पवित्र मिसा के बाद बोर्गो लाउदातो सी का दर्शन करने के बाद संत पापा के साथ वे खाना खाएंगे। यह मीटिंग अगस्त 2025 में शुरू की गई एक पहल पर आधारित है, जब संत पापा लियो 14वें ने इटली में अल्बानो धर्म प्रांत के गरीब लोगों के साथ भोजन किया था। तब से यह मुलाकात एक सालाना कार्यक्रम बन गई है, जिसे उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र बढ़ावा दे रहा है, जो बोर्गो लाउदातो सी परियोजना के विकास की देखरेख करता है। हर साल अलग धर्म प्रांत को बुलाया जाएगा ताकि वे गरीब लोगों, प्रवासियों, शरणार्थियों और मुश्किलों का सामना कर रहे दूसरे लोगों को एक साथ ला सकें, उन्हें दुनिया की खूबसूरती में डूबे रहने का एक दिन दे सकें और संत पापा से मिलने का अवसर दे सकें। इस साल का कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र, उदार सेवा के लिए गठित विभाग और रोम धर्म प्रांत मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बागियो ने कहा कि बोर्गो लाउदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है, जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। उस संदेश को दोहराते हुए उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस मारिन ने कहा, संत पापा की पसंद इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्चा दान निकटता, मुलाकात और साझाकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा, जब कलीसिया सबसे कमजोर लोगों को केंद्र में रखती है तो यह सुसमाचार को दृश्यमान बनाती है और गवाही देती है कि कोई भी ईश्वर के हृदय के हाशिए पर नहीं है। और महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर, जो वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव हैं, वाटिकन और संघीय गणराज्य नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए 2 जुलाई को संघीय गणराज्य नाइजीरिया पहुंचे और मंगलवार 7 जुलाई को अपना दौरा खत्म किया। यह पश्चिम अफ्रीकी देश 30 मिलियन से ज्यादा कैथोलिक और 10,000 से ज्यादा कैथोलिक पुरोहितों का घर है, जबकि इसे लगातार बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। विदेश मंत्री बियांका और इकोवास कमीशन के अध्यक्ष अमर अलेयू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति टिनुबू ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकार के इस वादे को फिर से पक्का किया है कि वह अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को प्राथमिकता देंगे और देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच शांति, मेलजोल और सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने रविवार सुबह अबूजा की गार्की में नाइजीरिया की रानी महागिरजा घर में वाटिकन और नाइजीरिया के बीच 50 साल के राजनयिक रिश्तों के लिए धन्यवादी मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। उधर सरकारी मीडिया ने बताया कि मंगलवार को सेंट्रल दमिश्क में उस होटल के पास 2 विस्फोटक उपकरण फटने से 18 लोग घायल हो गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों रुके हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल को विस्फोटक उपकरण मिले थे और वे उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे फट गए। एक विस्फोटक पार्क में हुई कार के अंदर और दूसरी कूड़ेदान में छिपाई गई थी। राष्ट्रपति मैक्रो, जो राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा से बातचीत करने के लिए सीरिया की राजधानी में थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में एक स्कूल हेडमास्टर समेत 4 लोग मारे गए। इसराइली सेना ने कहा कि गाड़ी एक प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में घुस गई थी और उसे खतरा माना जा रहा था। पिछले महीने युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह इसराइल का सबसे बड़ा खतरनाक हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा लड़ाई शुरू होने के बाद से इसराइली हमलों में कम से कम 4,319 लोग मारे गए थे। इस बीच यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि 1,000 से ज्यादा दिनों की लड़ाई के बाद गाजा में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। वहां बच्चे मारे गए हैं, अपाहिज हो गए हैं और बेघर हो गए हैं, और उन्हें जिंदा रहने, बढ़ने और ठीक होने के लिए जरूरी चीजों से वंचित कर दिया गया है। उधर जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से ही हैती एक बड़े संकट से गुजर रहा है। तब से हथियारबंद गिरोह ने लगातार अपना कंट्रोल बढ़ाया है, जिससे संस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। हैती में मानवीय सुरक्षा संकट लगातार जारी है। हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत कार्लोस के अनुसार गिरोह हिंसा के कारण लगभग 1.5 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कम से कम 1,600 लोग मारे गए हैं। इन्फोबे के साथ एक साक्षात्कार में यूएन दूत ने कहा कि हथियारबंद गिरोह, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 के बीच है, राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के लगभग 70-75% हिस्से पर असर या कंट्रोल रखते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।

0: संकट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इटली का यह द्वीप उत्तरी अफ्रीकी तट के करीब है और संघर्ष, उत्पीड़न एवं गरीबी से बचने वाले हजारों अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के लिए यूरोप में घुसने का प्रवेश द्वार है। अपने साफ फिरोजी समुद्र, सफेद रेतीले तटों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का रैबिट बीच विश्व के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है और यह समुद्री कछुओं के अंडे देने का महत्वपूर्ण स्थान भी है। इस तरह लंपेदूसा द्वीप अपनी सामरिक स्थिति, प्राकृतिक सौंदर्य, समुद्री जैव विविधता और प्रवासी संकट के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके बावजूद लंपेदूसा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह यूरोप एवं अफ्रीका के बीच होने के कारण प्रवासी संकट का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां बार बार मानवीय त्रासदियां एवं समुद्री दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हर वर्ष हजारों लोग छोटी एवं असुरक्षित नावों से भूमध्य सागर पार करके यहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस यात्रा के दौरान अनेक नावें डूब जाती हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लंपेदूसा का नाम मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन गया है। दूसरी बड़ी समस्या जिससे लंपेदूसा जूझ रहा है वह है सीमित संसाधनों और छोटी आबादी वाले इस द्वीप पर अचानक भारी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से स्थानीय प्रशासन एवं निवासियों पर भारी दबाव पड़ना। इन्हीं परिस्थितियों के बीच पोप लियो चौदहवें ने 4 जुलाई को लंपेदूसा की एक दिवसीय यात्रा की। उन्होंने अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान प्रवासियों एवं शरणार्थियों की बुरी हालत पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
1: Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita.
0: 4 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे भूमध्य सागर द्वीप पहुंचने पर पोप लियो चौदहवें ने द्वीप के लोगों एवं लंपेदूसा से गुजरने वाले अप्रवासियों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। साथ ही उन लोगों के प्रति शोक प्रकट किया जो अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर सके। लंपेदूसा पहुंचकर पोप सबसे पहले कब्रस्थान गए, जहाँ समुद्र में अपनी जान गंवाने वालों की कब्रें हैं। कब्रस्थान में हर तरह के लोगों को दफनाया गया है, कैथोलिक और मुस्लिम, जवान और बूढ़े तथा काले एवं गोरे, जो आज़ादी की तलाश में समुद्र में खो गए। फिर वे यूरोप जाने का द्वार गए, जो एक स्मारक है और उन प्रवासियों की याद में बनाया गया है जो यूरोप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी।
1: Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto.
0: लंपेदूसा के लोगों ने संत पापा के आने के करीब एक घंटे बाद उनकी आवाज सुनी, जब उन्होंने सलाइन इलाके के एरिना खेल मैदान में अपने दौरे के पहले हिस्से में छाई चुप्पी को तोड़ा और पूरे समुदाय को उनके गर्म जोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उनका पहला विचार संत पापा फ्रांसिस के लिए था, जिन्होंने 2013 में इसी शहर को प्रवासी त्रासदी का केंद्र एवं एकजुटता की वेदी बनाया था। पोप लियो ने कहा, आपने फाउलोरो पियर तट का नाम संत पापा फ्रांसिस के नाम पर रखा है, यह उस रिश्ते की निशानी है जो मेरे पूर्वाधिकारी ने आपके समुदाय एवं हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ बनाया है। आज मैं आपको यह बताने आया हूँ कि संत पापा आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपको हिम्मत देते हैं। इसके बाद पोप ने एक खुली जीप में भीड़ के बीच से गुजरते हुए बच्चों को आशीर्वाद दिया तथा लंपेदूसा की संरक्षिका पोतो साल्वो की माता मरियम की प्रतिमा वाले सादे मंच से लंपेदूसा एवं लिनोसा के विश्वासों का अभिवादन किया। तत्पश्चात अरेना खेल मैदान में करीब 6,000 लोगों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित किया। लंपेदूसा द्वीप में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए पोप लियो चौदहवें ने अप्रवासियों एवं शरणार्थियों के साथ हुए बुरे वर्ताव तथा समुद्र में हुई मौत की निंदा की और दुनिया से इस घोर दुख पर ठोस एवं दया से जवाब देने की अपील की। अपने प्रवचन में पोप लियो ने कहा, आज लंपेदूसा एवं उसका पड़ोसी द्वीप लिनोसा सुसमाचार में वर्णित भले समारी की कहानी में यरूशलेम से जेरिको जाने वाले रास्ते के समान खतरनाक है। यहाँ आपने सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों इंसानों को

लुटेरों के हाथों पड़ते देखा है, जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया है, उन्हें बुरी तरह पीटा और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। संत पापा ने दुख जताया कि समुद्र ने कई और लोगों की जान ले ली है जो अपनी उम्मीद की मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, जिनकी मौजूदगी हमें उतनी ही चुनौती देती है जितनी उन लोगों की जिन्हें ध्यान और मदद की जरूरत है। पोप ने आगे कहा, असल में किसी भी चिंतन या सोच से पहले जो लोग हमारे सामने हैं उनसे मिलना हमें उनके करीब आने के लिए कहता है। लंपेदूसा के लोगों की ओर मुड़ते हुए पोप ने उनकी एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, लंपेदूसा के भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है उसके लिए करुणा का चमत्कार एक बार फिर होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, दूसरों तक पहुँचने में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हल्के में लिया जाए, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। पोप ने कहा कि जो लोग खुद को करुणा और दया के इस माहौल में खींच लेते हैं वे अलग तरह से जीना शुरू करते हैं, एक नए तरीके से नागरिक बन जाते और अलग तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पूर्वाधिकारी संत पापा जॉन 23वें, संत पापा पॉल 6वें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय द्वारा सोची गई प्यार की सभ्यता सच में उभर सकती है। उन्होंने कहा, पिछली सदी के बहुत सारे नबियों और शहीदों के साथ वे समझ गए थे कि सिर्फ दया ही इंसान के दिल की गहराई एवं युद्ध के डरावनेपन का जवाब दे सकती है और एक नई शुरुआत का रास्ता खोल सकती है। अब इन दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर हम एक ऐसी सदी में आ गए हैं जिसमें हमें प्यार की सभ्यता को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक रूप देना होगा। पोपलियो ने दिल से अपील करते हुए कहा, हम जो दुख देख रहे हैं उसकी गंभीरता हमें इस बुलावे के असली रूप को समझने में मदद करे। इस तरह लंपेदूसा में पोपलियो 14वीं की प्रेरित यात्रा करुणा, मानव गरिमा एवं एकजुटता का सशक्त संदेश देती है। यह यात्रा हमें स्मरण दिलाती है कि प्रत्येक प्रवासी और शरणार्थी सबसे पहले एक इंसान है जिसकी सुरक्षा, सम्मान और आशा की रक्षा करना समस्त मानवता की जिम्मेदारी है। पोप का संदेश केवल लंपेदूसा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आह्वान है कि भय, उदासीनता और भेदभाव के स्थान पर प्रेम, करुणा, न्याय एवं भाईचारे को अपनाया जाए। इस प्रकार लंपेदूसा आशा, शांति एवं मानवीय संदेश का प्रतीक बनकर विश्व को यह प्रेरणा देता है कि हम प्रत्येक पीड़ित एवं जरूरतमंद व्यक्ति में ईश्वर की छवि को पहचानें और उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने लंपेदूसा में पोप लियो 14वें की प्रेरित यात्रा का संक्षिप्त रिपोर्ट सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के बोर्गो लाउदातो सी में 200 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। संत पापा के साथ भोजन नाम के इस पहल की शुरुआत सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पवित्र मिसा समारोह से होगी। पवित्र मिसा के बाद बोर्गो लाउदातो सी का दर्शन करने के बाद संत पापा के साथ वे खाना खाएंगे। यह मीटिंग अगस्त 2025 में शुरू की गई एक पहल पर आधारित है, जब संत पापा लियो 14वें ने इटली में अल्बानो धर्म प्रांत के गरीब लोगों के साथ भोजन किया था। तब से यह मुलाकात एक सालाना कार्यक्रम बन गई है, जिसे उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र बढ़ावा दे रहा है, जो बोर्गो लाउदातो सी परियोजना के विकास की देखरेख करता है। हर साल अलग धर्म प्रांत को बुलाया जाएगा ताकि वे गरीब लोगों, प्रवासियों, शरणार्थियों और मुश्किलों का सामना कर रहे दूसरे लोगों को एक साथ ला सकें, उन्हें दुनिया की खूबसूरती में डूबे रहने का एक दिन दे सकें और संत पापा से मिलने का अवसर दे सकें। इस साल का कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र, उदार सेवा के लिए गठित विभाग और रोम धर्म प्रांत मिलकर आयोजित कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महानिदेशक कार्डिनल फाबियो बागियो ने कहा कि बोर्गो लाउदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है, जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। उस संदेश को दोहराते हुए उदार सेवा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष लुइस मारिन ने कहा, संत पापा की पसंद इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्चा दान निकटता, मुलाकात और साझाकरण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। उन्होंने कहा, जब कलीसिया सबसे कमजोर लोगों को केंद्र में रखती है तो यह सुसमाचार को दृश्यमान बनाती है और गवाही देती है कि कोई भी ईश्वर के हृदय के हाशिए पर नहीं है। और महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर, जो वाटिकन के राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव हैं, वाटिकन और संघीय गणराज्य नाइजीरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए 2 जुलाई को संघीय गणराज्य नाइजीरिया पहुंचे और मंगलवार 7 जुलाई को अपना दौरा खत्म किया। यह पश्चिम अफ्रीकी देश 30 मिलियन से ज्यादा कैथोलिक और 10,000 से ज्यादा कैथोलिक पुरोहितों का घर है, जबकि इसे लगातार बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात की। विदेश मंत्री बियांका और इकोवास कमीशन के अध्यक्ष अमर अलेयू भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति टिनुबू ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकार के इस वादे को फिर से पक्का किया है कि वह अलग अलग धर्मों के बीच बातचीत को प्राथमिकता देंगे और देश के अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच शांति, मेलजोल और सहनशीलता को बढ़ावा देंगे। महाधर्माध्यक्ष गलाघेर ने रविवार सुबह अबूजा की गार्की में नाइजीरिया की रानी महागिरजा घर में वाटिकन और नाइजीरिया के बीच 50 साल के राजनयिक रिश्तों के लिए धन्यवादी मिसा समारोह का अनुष्ठान किया। उधर सरकारी मीडिया ने बताया कि मंगलवार को सेंट्रल दमिश्क में उस होटल के पास 2 विस्फोटक उपकरण फटने से 18 लोग घायल हो गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों रुके हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल को विस्फोटक उपकरण मिले थे और वे उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे फट गए। एक विस्फोटक पार्क में हुई कार के अंदर और दूसरी कूड़ेदान में छिपाई गई थी। राष्ट्रपति मैक्रो, जो राष्ट्रपति अहमद अल शर्रा से बातचीत करने के लिए सीरिया की राजधानी में थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में एक कार पर इजरायली ड्रोन हमले में एक स्कूल हेडमास्टर समेत 4 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि गाड़ी एक प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में घुस गई थी और उसे खतरा माना जा रहा था। पिछले महीने युद्ध विराम की घोषणा के बाद यह इजरायल का सबसे बड़ा खतरनाक हमला था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 4,319 लोग मारे गए थे। इस बीच यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि 1,000 से ज्यादा दिनों की लड़ाई के बाद गाजा में हालात बहुत खराब बने हुए हैं। वहां बच्चे मारे गए हैं, अपाहिज हो गए हैं और बेघर हो गए हैं, और उन्हें जिंदा रहने, बढ़ने और ठीक होने के लिए जरूरी चीजों से वंचित कर दिया गया है। उधर जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से ही हैती एक बड़े संकट से गुजर रहा है। तब से हथियारबंद गिरोह ने लगातार अपना कंट्रोल बढ़ाया है, जिससे संस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं और जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। हैती में मानवीय सुरक्षा संकट लगातार जारी है। हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष दूत कार्लोस के अनुसार गिरोह हिंसा के कारण लगभग 1.5 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कम से कम 1,600 लोग मारे गए हैं। इन्फोबे के साथ एक साक्षात्कार में यूएन दूत ने कहा कि हथियारबंद गिरोह, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग 10,000 से 15,000 के बीच है, राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के लगभग 70-75% हिस्से पर असर या कंट्रोल रखते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।